साउथ अफ्रीका में पहला सफर है। आज से पहले 3-4 दिन मुख्तलिफ जगह प्रोग्राम हुए, इतना ठंडा सलाम का जवाब कहीं नहीं आया। मौलाना ने तो मेरा ऐसा तारुफ कराया, मैंने कोट भी थोड़ी देर और बोलते तो सॉक्स भी उतारने पड़ते। लेकिन आप बड़े तकड़े हो, इतनी प्यारी नशीद पढ़ी हमारे भाई ने माशाल्लाह, कसीदा हसन। हालांकि इनकी उर्दू भी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने एक बार भी सुबहानअल्लाह कि खुदा ना खास्ता सवाब ही ना हो जाए आपको, तो एक बार कह देना सुबहानअल्लाह। और किरत भी बहुत अच्छी हुई। हज़रत मौलाना की जामे मस्जिद में पहली बार आया हूँ, और मौलाना हबीब साहब, भाई याकूब साहब मैथर 20 साल से रबते में थे, अल्लाहु अकबर, और अल्लाह ने मुकद्दर में अभी किया। और फिर भी आप सलाम का जवाब ना दो यार, खुदा के बंदो। उर्दू तो आपको सबको आती है ना माशाल्लाह, या इंग्लिश में शुरू कर दूं? अगर मैंने इंग्लिश शुरू किया आप मेरे पाँव भी पकड़ोगे, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بڑی پیاری نشید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان بن ثابت دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے، تو میں ایک بار پھر سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہے دکہ اسٹارٹ ہے، ये सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो मेरा तो एक सादा सा मिजाज है हज़रत, मैं जब नात पढ़ता हूँ साथियों को कहता हूँ भाई मेरे साथ साथ पढ़ो। नात तो पत्थर भी पढ़ता है, जानवर गो, जब, जब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इगुआना। उसने भी नात सुनाई, भेड़िया ने भी नात सुनाई, और ईमान वाला जब नात सुनता है पढ़ता है तो एक अजीब रूह खुश होती है, अमल की तौफीक भी मिलती है। फिर पढ़ते रहेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु वलकल शुक्र कुल्लु। अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

साउथ के सफर में मैंने जहां भी इब्तिदा की सूरह रहमान से की वेंडा गए पोलकवानी पोलकवानी है ना मैं कहता हूं जाते जाते याद हो ही जाएंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे पूछेगा तो कुछ तो बताएंगे और उसके बाद रात न्यू टाउन में थे और अभी लेनेशिया अल्लाह आगे का सफर भी आसान फरमाए और सूरह रहमान के बाद मैं एक कलाम से इब्तिदा करता हूँ उस कलाम में बरकत भी है अल्लाह का जिक्र भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है जिसके सदके हम सब यहाँ जमाए लौला कलमा वो ना होते तो बोलो भाई कुछ ना होता मेरे साथ बोल सकते हैं आप इंशाल्लाह मर्दाना ही है ना तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं कोई मैं गलती करूँ मुझे रोक भी सकते हैं यहाँ नहीं बाहर अभी तो माइक मेरे हाथ में आज ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे कुछ पूछ भी सकता हूँ इंशाल्लाह सीरत से मुतालिक कोई एक आध सवाल भी पूछ लेंगे इंशाल्लाह ताकि हमारे अंदर सीरत को पढ़ने का शौक पैदा हो जाए इंशाल्लाह तो इब्तिदा करते हैं छः नंबर से छः नंबर में पहला नंबर बोलो भाई ला इलाहा थोड़ा तगड़ा बोलो ला इलाहा हाँ थोड़ा और ऊंचा बोल दें ला इलाहा तो इसमें अल्लाह का जिक्र है उम्मीद है मेरे साथ आप भी करेंगे इंशाल्लाह तो शायर कहता है

हम कितने मजे से कलमा पढ़ रहे हैं, नीचे कारपेट है, छत है, प्यारी सारी मस्जिद है मौलाना की माशाल्लाह। कलमा तो उन्होंने पढ़ा था 50 डिग्री 60 डिग्री और कोयलों पे लिटाया हुआ, अंगारों पे लिटाया हुआ, और क्या कहते थे, अहद अहद। हमसे तो इसमें भी आवाज नहीं निकल रही, लेकिन वो उस हाल में भी क्या कहते थे, अहद। मुशरिक आके कहते थे कि छोड़ दो बिलाल, जिसे पुकार रहे हो वो तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर रहा, तुम्हें तो और तकलीफ दे रहे हैं। हजरत बिलाल का क्या जवाब होता था, मैं साथियों को कहता हूं उसको याद कर लो। वो जवाब देते थे कि वो देख रहा है कि बिलाल कच्चा है या पक्का है। कहो ना अल्लाहु अकबर, बिलाल कच्चा है या पक्का है? और ऐसे पक्के उतरे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुन के आ रहा हूं। तो एक बार हम दिल से ऐसे भी पढ़ लें इंशाल्लाह, एक बार सारे कहो मेरे साथ।

माशाल्लाह, नूरुल इस्लाम मस्जिद वाले लग रहे हो, इस्लाम के नूर वाले, ये नूर पूरे आलम में जाएगा इंशाल्लाह और एक एक हिदायत का चराग बनेगा इंशाल्लाह। मिलके कहें

sallallahu alaihi wasallam. अब समझ नहीं आती मैं माशाल्लाह बोलूं या आप बोलो, पढ़ा तो सबने. आप मेरे लिए बोलो, मैं आपके लिए बोल देता हूं माशाल्लाह बोलो या इन्ना लिल्लाह, माशाल्लाह बोलो ना, ताकि आगे सिलसिला चले इंशाल्लाह. बहुत सारी फरमाइशें हैं, तलबा भी बैठे हैं छुप छुप के जो आए हुए हैं तकरार से भाग के, पूछ के आए हुए हैं. छोड़ तो नहीं बताओ एक दूसरे को, पर्दा रखो. अल्लाह सत्तार है, उसने हम पे पर्दा रखा हुआ है और कहो अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत सारी फरमाइशें हैं. साथियों ने कहा है कि मुफ्ती साहब अनस भाई ये वाली भी पढ़नी है वो वाली भी पढ़नी है, तो बताओ पहले ये वाली पढ़ूँ या वो वाली, है ना. मौला तशरीफ फरमाए इस वक्त, आप लोग पावर में हो आज. ये वाली वो वाली नहीं, दोनों. हमारे यहाँ एक मसला छिड़ गया. एक आदमी आया कहने लगा ये नहर बहती है. क्या कहने लगा? नहर है ना, नहर का पानी. कहने लगा नहर का पानी, ये नहर बहती है. दूसरा आया कहने लगा पागल हो रहा है, नहर बहती नहीं है, नहर बहता है. इसने कहा नहर, और उसने क्या कहा? तीसरे को बुलाया भाई फैसला कर मसला हुआ है, मैं कहता हूं बहती है, ये बोलता है बहता है. उसने कहा नहर ना बहती है ना बहता है, नहर तो बहे हैं. तो ये वाली सुनाओ या वो वाली, दोनों सुना दो. दिल में आ रहा है हजरत, मैं अक्सर जब नात पढ़ता था, जुनैद जमशेद अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, माशाल्लाह कैसा काम करके गया, तो हम अक्सर एक नात मिल के पढ़ा करते थे. तो दिल में आ रहा है आपको उसके चंद अशार सुनाऊं आज, और इसके बाद फिर वो वाली सुनाऊंगा. सही है ना भाई? पहले ये सुना देते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. बड़ी मीठी नात है. शायर ने कहा और क्या खूब कहा, मेरी उल्फत. आए हाय अल्लाह अकबर. हजरत मैंने ये अल्लाह के फजल से रोजे मुबारक की जाली के सामने बैठ के पढ़ी. 2012 में एक वाकया पेश आया था, तो बिल्कुल जाली मुबारक के सामने बैठ के अल्लाह ने मौका दिया. दो तीन साथी थे पाकिस्तान के, रफीक खटक साहब, इशफाक भाई, तीसरे मुझे याद नहीं. हम वहीं बैठ के पढ़ा था, और कैसा पढ़ा था फिर व्हाट्सएप पे बताएंगे. चल व्हाट्सएप के उम्मत में बड़े एहसान आते हैं. तो नात बड़ी प्यारी है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना, फिर मैं एक वजीफा बताऊंगा, आप मुफ्त में उम्रा करके आओगे इंशाल्लाह. कितने में? मुफ्त में हज करके आओगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह साथ ही जाएंगे वहां, रोजे के सामने खड़े होके कहेंगे.

माशाल्लाह कुछ बच्चे बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत का चिराग बना दे। आप सारे को एक बार मेरे आका का मदीने में है। और फूल होते हैं ना, फूल खुशबू देते हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां ये हार मान जाते हैं, और वो कौन सा है?

sallallahu alaihi wasallam. माशाल्लाह, बहुत सारे साथी बाहर बैठे हुए, उनको सर्दी से कुछ और हो जाएगा ना, थोड़े आगे आगे आ जाएंगे अगर आ सके, दाएं बाएं थोड़ा आ जाएं, और उन इतना आगे नहीं, और जी तारे शारे बजाना, उन्हें तुम में से आवाज आएगी, पढ़ेंगे इधर से आवाज इनसे आएगी, ख्याल से हजरत। और जो बाहर साथी हैं उनसे दरखास्त है अंदर आ जाए भाई, वो शरीर पर्दे में बैठे हुए सारे। तो अब जो नात पढ़ने लगा हूं, मेरे ख्याल में आप बहुत सारे साथियों के दिल में होगा कि अनस भाई वो वाली सुनाए, तो अब आपको मैं वो वाली सुना देता हूं इंशाल्लाह, पर थोड़ा थोड़ा सा आगे। जज़ाकअल्लाह खैर, ये उनसे दरखास्त है अंदर आ जाए भाई, वो शरीर पर्दे में बैठे, मेरे शर मुझे पसीना आने लग गए। आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मानने वाला मजमा है साउथ अफ्रीका का, पूरे मुल्कों में जाएगा इंशाल्लाह, पूरे आलम में जाएगा। अब ये जो आगे आए ना, इन्होंने मेरे साथ पढ़ना है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ हजरत मौलाना, ताकि हमें बार बार आना ना पड़े इधर ही से, इतने बन जाए इनको हम बुलाएं अपने पास इंशाल्लाह। क्यों भाई, इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब आप तजवीद के बगैर नात पढ़ोगे। अभी तो उर्दू में तजवीद के साथ पढ़ते हैं। तो बड़ी प्यारी एक मकबूल नात है, वो आपको सुनाने लगा हूं। ये नात ऐसी है, मैं इसके बारे में कहा करता हूं कि 3-3.5 घंटे मेरे एक बार इस नात पे लगाए, एक नात पे। इसका हर हर जुमला मुस्तकिल तफसील है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल शान इसके अंदर बयान की गई। एक बार तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। और इस नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का भी जिक्र है, मुआशरत का भी जिक्र है, अल्लाहु अकबर। और उम्मीद है मेरे साथ जब पढ़ेंगे नूर नाला नूर होगा। हदीस शरीफ में आता है, इन्ना लिल्लाही मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते हैं जिनका नाम है सयाहीन। क्या नाम है? अल्लाह ने एक काम के लिए उन्हें बनाया बस। क्या खजाने अल्लाह के, सिर्फ एक ड्यूटी, और वह क्या? पूरे आलम में कहीं पर भी ईमान वाला दुरूद पढ़े, वो फरिश्ते आते हैं उस दुरूद शरीफ को लेके सीधा गुंबद खजरा जाते हैं। आप एक बार कहें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो फरिश्ते आए ले गए, और उस दुरूद पढ़ने वाले के वालिद का नाम मिला के उससे प्यारा करके खूबसूरत करके हुजूर की खिदमत में पेश करते। मैंने एक जगह ये बात कही, एक साथी ने कहा दुरूद तो पहले ही प्यारा होता है, उसको कैसे मजीद खूबसूरत किया जाए। मैं कहा देखो इसकी मिसाल यूं है, आप मिठाई लेने जाते हैं ना कहीं, बोलते भाई 2 किलो मिठाई दो, वो डब्बा लेगा शॉपर लेगा मिठाई डाल के दे देगा, आप बोलोगे नहीं मुझे तो किसी को गिफ्ट देना है, हाँ हदिया देना है, तो डब्बा निकाल के उस पर पन्नी चढ़ाएगा, यहाँ करते हैं ऐसे, रिबन लगाएगा फूल लगाए, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ करते हैं, पूरा मजार बना देते हैं उस डब्बे का, और एक अच्छे शॉपिंग बैग में देगा, हदिया देना है ऐसा दो। हमारा पड़ा हुआ दुरूद वो फरिश्ते हदिया बनाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर, उस दरबार के शायने शान करके पेश कर, फिर कह दें सल्लल्लाहु अलैहि। ये बहुत सारे बच्चे इनको ये नात आती भी है, और उम्मीद है मेरे साथ पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। नूरुल इस्लाम मस्जिद में हम इसको तारीख बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऊपर से तारीख बने, बनेगी इंशाल्लाह। तो मिल के कहें मेरे साथ,

0: sallallahu alaihi. Kya mubarak nufus hai, haan? Allahu akbar. Allah kuch hissa hume bhi naseeb farma de inka. Main isnad ko padhne se pehle ya baad mein ek sawal karta hu majme se ke dekho bhai, mashallah, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki naat sunne hum sare jama hai. Zindagiyan guzar gayi, koi 70 saal ka hai, koi 80 saal, koi 60 saal, nojawan aur bacche bhi baithe hain. Mera ek chota sa sawal hai ke aaj tak humne ek martaba apne nabi ko padha? Honge kuch honge. Sach sach apne aap se poocho ki jin pe jaan bhi qurban karne ko taiyar hain, jo wajh hai kainat, jinki shafaat ke hum umeedwar hain, kya ek baar bhi padha? Badi badi kitabe padhi hain, badi badi kitabe, tagde ilm hasil kiye, humne ek baar bhi apne nabi ko nahi padha? Ye wafaye bewafai hai. Ye sirf zubani daave. To kya karna hai? Padhna chahiye nahi padhna chahiye? Hame pata to ho bachpan kaisa guzra, jawani kaisi guzri. Isiliye hame deen ki bahut sari cheezon ko nahi pata. Hum sirf ibadat ki line ke deen ko pura deen samajhte hain. Namaz, roza, haj, zakat jo karega bas wo musalman hai. Aur jo duniyadari karta hai kehte hain ye to duniyadari karta hai. Jabke duniyadari to asal deen hai. Hazrat Maulana, thoda sa aapki ijazat ho to. Allah ho, Allah usse razi ho. Muamlaat to asal deen hai. Kai baar huzur Hazrat Khadija ka samaan tijarat leke gaye. Balki main to kaha karta hu, muamlaat ki line se Allah wo dete hain jo ibadat ki line se nahi milta. Aap bhi bologe kaise? Huzur ne farmaya, at-tajiru saduqul amin maan nabiyyin wa siddiqin. Sacha aur amanatdar tajir hoga, Allah iska hashar nabiyon ke sath karega. To iman wale ka har amal deen hai. To panch kaam jo kare seedha jannat mein: iman, ibadat, muamlat, muasharat, akhlaq. Aur muasharat ka hamara janaza nikla hua hai. Hum masjid mein Abu Bakr aur ghar ka darwaza khulte hi pata nahi kya hota. Amma Khadija farmati thi, jab bhi huzur ghar mein dakhil hote muskurate hue dakhil hote. Ek din muskura ke nahi aaye, kehne lagi khair to hai aap muskura ke nahi aaye. To aapne farmaya Makkah walon ne takleef bahut di aaj. Ye sari muasharat ki line ka deen hame jab pata chalega, ghar mein sukoon aayega, itminan aayega. Aur akhlaq to 24 ghante ki ibadat hai. Aur hamare akhlaq kya hain? Wo salam karega to main karunga. Nahi, ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka deen nahi. تو بھائی ہم کم از کم آج کی اس محفل میں نیت کر کے اٹھیں کہ ایک بار تو اپنے نبی کو پڑھیں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے عزم کر کے. جیسے مولانا حبیب صاحب نے سٹارٹ میں بتایا بھی کہ ہم نے سیرت النبی شروع کی ہے ابراہیم علیہ السلام سے, اور سٹیپ بائی پارٹ ون, پارٹ ٹو, پارٹ تھری, پارٹ سکسٹین اس کے آ گئے, حضرت حمزہ کے اسلام تک آئے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے, سن تو سکتے ہیں. میں اپنی ویورشپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ. آپ کم از کم ایک بار تو اس کو سنیں کہ حضور کی مبارک زندگی کیسی. میں آپ کی فکر کے لیے ایک دو سوال پوچھتا ہوں, اجازت ہے؟ اور جو جواب دے گا اس کو انعام بھی ملے گا انشاءاللہ. حضرت جو جواب دے گا اس کو انعام بھی. یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اس کا فائدہ بڑا ہوا ہے. ایک سوال ہوگا بچوں سے اور ایک سوال ہوگا بچوں والوں سے. آپ جو بیچ میں, اس سے بھی ہو جائے گا, اس کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا بےچارے کا. پہلا سوال چلو بھائی بچوں سے پوچھتے ہیں. بھائی زندہ ہو جاگے وہ سارے ماشاءاللہ, ہاں اردو آتی ہے؟ اور جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. بیچ میں بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, کافی تعداد ہے بچوں کی. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب بچے مسجد میں آتے ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے الحمدللہ. بچے کہاں کہاں بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں. آپ تو سب اپنے امی ابو کے بچے ہی ہو, لیکن ابھی جو بچہ ہے ادھر ہے, ادھر ہے. اور بھائی یہ چکندر, ابھی تو داڑھی والا ہے خدا کے بندے. چلو بھائی بچوں سے سوال ہے. سوال یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا جس کو جواب آئے گا ہاتھ کھڑا کرے گا, اوکے, جس کو جواب آئے گا ہاتھ کھڑا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے تھے؟
1: उनके नाम क्या थे
0: और उनकी अम्मी जान का नाम क्या था? वेंडा का प्रोग्राम देखा हुआ इन्होंने? नहीं, इतना याद नहीं रहता आजकल. हम भी इम्तिहान के दिन रात ही को तैयारी करते थे. किस अरे माशाल्लाह, ये बच्चा खड़ा हुआ है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुआज. थोड़ा आगे आ जाओ मुआज, आ जाओ जाओ. वो अपना वो सामे लेके आ रहा है क्या साथ में, गलती निकालने वाला. बस ठीक है, कितने बेटे थे? आप इधर उधर नहीं देखना, मुझे देखना डायरेक्ट, ठीक है? तीन बेटे थे. वेरी गुड, माशाल्लाह. बेटियां कितनी थी? चार थी. बेटों के नाम क्या थे? रज़ियल्लाहु अन्हुम. माशाल्लाह भाई, तुम माशाल्लाह तो बोलो ना यार, ना सुबहानअल्लाह बोलते हो ना माशाल्लाह बोलते हो यार. खुदा के वो इंतजार सदकअल्लाह का होता है बस. कासिम इब्राहिम अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुम. और बेटियों के नाम क्या थे? किसने बताया ये चौथा? ये किसी इन शयातीन अलयुहून इला औलिया है, वही कभी ऐसे भी आती है. वैन अतातुमुहुम. अच्छा चलो, मुआज ने सही बताया या गलत बताया? जो बोलते हैं सही बताया हाथ खड़ा करें. अच्छा, कहीं तो हाथ खड़ा करना है. हाँ, ही या शी में तो होना है इंशाल्लाह. मुआज ने सही बताया या गलत बताया? सिर्फ आप हजरात की तायीद चाहिए. जो कहते सही बताया हाथ खड़ा करें. एक दो. और जिनके हाथ नीचे, इसका मतलब है इसने गलत बताया. भाई सही बताया भाई, माशाल्लाह, कसम खुदा की सही बताया. अब तो यकीन आ गया, अब तो हाथ खड़ा करो ना अब तो. अच्छा मुआज, ये बताओ, कासिम इब्राहिम अब्दुल्ला, ये तैयब ताहिर कौन थे? पूरा हल करते हैं ना मसले को, पूरा हल करते हैं. ये जो नीचे देख रहे हैं ना, गूगल तो नहीं खोला हुआ इन लोगों ने यार, ये बड़ा अजाब है यार. मैं बैंकॉक में था ना, मुझे उनकी जबान आए ना उनको मेरे को है. मैं सवाल पूछने लगा बच्चों से, खटक जवाब, सवाल पूछो खटक जवाब. मैंने कहा ये तो हमारे मौलवियों से भी तेज है बच्चे, ना गूगल खोला हुआ है नीचे सारों ने. अब मैं सवाल पूछता हूं तो बोलता हूं गूगल तो नहीं खोला हुआ. हाँ मुआज, ये तैयब ताहिर कौन थे? नहीं पता, ये भी एक जवाब है. कौन बताएगा? मुआज का साथ कौन बच्चा देगा? अच्छा, इनकी अम्मी जान का नाम क्या था? इन बच्चों की, माशाल्लाह, माशाल्लाह तो बोलो, दिल दिल में नहीं बोल रहा यार. ठीक है, सारे नक्शबंदी हो, थोड़ा ऊंचा भी बोल दो. हजरत खदीजा सबकी अम्मी थी, बिल्कुल इनाम के करीब है. मुझे दुख होगा, इधर उधर नहीं देख, मुझे देख डायरेक्ट. मौला हबीब साहब, ये सिलसिला बड़ा अच्छा है. अगर सीरत क्विज और ये मुकाबले हों बच्चों में, इनका इल्म बड़ा आगे जाएगा इंशाल्लाह. बस जल्दी खत्म करते, बताओ इन सब की अम्मी हजरत खदीजा थी. हाँ माशाल्लाह, हो गया हल. आ गया जो, आ गया जो. हजरत मारिया किप्तिया किसकी वालदा थी? ये किसी मौलवी साहब बैठा हुआ है कोई नीचे, नीचे कोई ना कोई मौलवी साहब. खैर आप आगे आ जाओ, मास आ जाओ भाई. सारे कहो भाई माशाल्लाह, जवाब पूरा दिए इसने माशाल्लाह. हजरत इब्राहिम की वालदा कौन थी? मारिया किप्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा. हजरत माशाल्लाह, कहाँ पढ़ते हो आप? हाँ मसला उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह, यहीं पर है, यहीं पर है भाई माशाल्लाह. आ जाओ भाई, अब बड़ों का जवाब भी आना चाहिए, सही है? मुआज तफ़ज़ल. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर फरमा मौलाना आपके हाथ से. चलो भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह इसकी बरकत अता फरमाए. सारे बड़ो भाई माशाल्लाह. आपसे पूछूँ या ना पूछूँ? वैसे मुझे पता है, आपको पता है. हाँ भाई सारे बोलो, नजर न लगे भाई माशाल्लाह. बाकी आपसे पूछूं या ना पूछूं? मुझे से मुझे पता है, आपको पता है सारा, इसको रहने देते हैं. अब बहुत सारे साथी आए रात वाली मजलिस से, उन्होंने कहा था अनस भाई और रात को जो एक कलाम मैंने सुनाया तो उसकी भरपूर फरमाइश थी माँ वाली. हकीकत में तो ये कलाम माँ बाप दोनों का है और अरबी का एक मकूला है कमा तदीनो तुदानो जैसी करनी वैसी भरनी, उस बुनियाद पे ये कलाम है. और ये कलाम मैंने क्यों पढ़ा था, ये कलाम मैंने इसलिए पढ़ा था कि लोग आजकल माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं. हमारे यहाँ एक वाकया पेश आया था, एक डॉक्टर साहब ने अपनी वालदा को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया. तो ओल्ड हाउस वालों का फोन आता था, भाई माँ तड़प रही है, तरस रही है, मिलने आ जाओ. वो कहता था बड़ा मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता. करते करते एक दिन फोन आया, भाई तेरी माँ का आखिरी वक्त है, अब तो आ जाओ. कहने लगा पक्की बात है आखिरी वक्त है. अल्लाह हो, इतना तो दीन सिखाओ कम अज कम आपको बाय से रहमत तो समझे. हाँ भाई, तो खैर एक ओल्ड हाउस में चले गए तो माँ का वाकई आखिरी वक्त था. माँ लेटी हुई थी तो माँ जैसे ही बेटे को देखा खुश हो गई, कहने लगी अच्छा किया बेटा आ गया. बेटे ने कहा अम्मा कोई खिदमत मेरे लायक? तो माँ कहने लगी इस ओल्ड हाउस में पंखे नहीं है, पंखे तो लगा दे. वो कहने लगा अम्मा पहले बोलती मैं एसी का इंतजाम करता. तो माँ ने कहा तू फोन ही नहीं उठाता था. अल्लाह हो. और फिर अजीब जुमला उस वालदा ने कहा मैं तो आज भी तुझे ना बोलती लेकिन मुझे डर लग गया इसलिए मैं तुझे बोल रही हूं. कहा किस बात का डर लग गया? तो माँ ने कहा मुझे इस बात का डर लग गया कि कल को तेरी औलाद तुझे यहां लाएगी. मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी, तू मेरा लख्त जिगर है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी तैयारी करके आना. ओहो, जैसी करनी वैसी बन. ये मैंने कलाम पढ़ा था, इंटरनेट की दुनिया में काफी आगे गया है, 200 मिलियन प्लस को भी क्रॉस कर गया है. बड़ा इसके अंदर अल्लाह ने एक तासीर रखी, एक सबक है. अल्लाह हमें सबक लेने वाला बना दे. दोनों नौजवानों के लिए सबक है, तुम आज वालिदैन के साथ जैसे चल रहे हो याद रखो कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसे ही चलेगी. और जो वालिदैन बच्चों को सिर्फ दुनिया ही दुनिया सिखा रहे, दीन नहीं सिखा रहे, ये ओल्ड हाउस में अपना बेड तैयार कर रहे हैं. अब ये कलाम क्या है तवज्जो से सुनना.

जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के। हमें अल्लाह वालिदैन की कदर करने वाला बना, जिनके चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अब आखिर में एक कलाम पेश करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मजलिस बर्खास्त करेंगे, और वो कलाम मेरे दिल में आ रहा है, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लो भाई इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप भी मेरे साथ इंशाल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जब भी हजरत की खिदमत में जाता था फरमाते थे भाई कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ो, तो फिर मैंने उर्दू तज़मीन के साथ कसीदा बुर्दा के चंद अशआर पढ़े थे, उम्मीद है आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शायर कहता है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे। अल्लाह, ये कसीदा बुर्दा शरीफ आज भी मस्जिद नबवी के अंदर की दीवारों में लिखा हुआ है। अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अशआर लिखे थे बड़े कमाल। सघन का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, जैसे आता है कह दो मेरे साथ, सघन

ये जो अब दुरूद पढ़ने लगा हूं ना, हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफात, जो कसरत से इसको पढ़ेगा और आंखों को हराम से बचाएगा, उसे मैं उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। ये बहुत बड़े आलिम का बताया वजीफा है, आप इसको मेरे साथ कहीं याद भी हो जाएगा।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा? अच्छा, उम्रा हज का वजीफा, मुफ्त में उम्रा करने का। बहुत आसान सा है, अजान होती है, अजान के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावते तामा, ये पूरा पढ़ के दिल में एक मर्तबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक, एक बार पढ़ लें मिलके। हाँ, जैसे हम मैना में पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ा लें, कहें मेरे साथ